0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, ता कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमर।

ऑप्टिक्स। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-1090 पर कॉल कीजिए। 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस। आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, अल्फा ऑप्टिकल जिगोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद, गोल्डन गेट प्लाजा में, ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-1090 पर कॉल कीजिए। 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

ओम अद श्री विचित्र वीर हनुमनमाला मंत्र श्री गणेशाय नमः। वीरा मंत्रस्य श्री रामचंद्रो भगवान ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री विचित्र वीर हनुमान देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे मारा मंत्र जपे विनियोगः अद करण्यासः। ओम राम नमुष्टाभ्याम नमः। ओम रीम गर्जनीभ्याम नमः। ओम रूम मध्यमाभ्याम नमः। ओम रीम अनामिकाभ्याम नमः। ओम रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम रः कर्तर्कर्पिष्ठाभ्याम नमः अद अंगन्यासः। ओम राम हृदयाय नमः। ओम रीम शिरसे स्वाहा। ओम रौं शिखायै वषट। ओम रीम कवचाय हुम। ओम रौं नेत्रत्रयाय वषट। ओम रः अस्त्राय पट। अद ध्यानम् वामे करे वैरवहम् महन्तम् शैलम् परिशृङ्करमालयाख्यम् दधानमाख्यामाद सुवर्णवर्णम् भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम्। ॐ नमो भगवते विचित्रवीरहनुमते प्रलयकालानल प्रभातप्रतापवज्रदेहाय अञ्जनेयगर्भसम्भूताय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस ग्रह बंधनाय भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह शाकिनी ग्रह डाकिनी ग्रह किनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बंधनाय एहि आगच्छागच्छ आवेशय आवेशय मम हृदयम् प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यम कथय कथय व्याघ्रमुखम् बन्धय बन्धय सर्पमुखम् बन्धय बन्धय राजमुखम् बन्धय बन्धय सभामुखम् बन्धय बन्धय शत्रुमुखम् बन्धय बन्धय सर्वमुखम् बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भञ्जन सर्वजनम् मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वान् आकर्षय आकर्षय शत्रून् मापय मापय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम रीं रों रीं रों रः श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हर हर हों फट स्वाहा। एकादश शतवारं जपित्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति इति श्री विचित्र वीर हनुमान माला मंत्रः संपूर्णम्। Thank you.

दक्षिणे भद्रकाली चेरिजा च महेश्वर्यां सर्वमङ्गला उत्तरे वैष्णवी पातु नैशान्यां शिव प्रिया जलस्थले चान्तरिक्षे पातु मां जगदम्बिका।

अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल, जिकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद, गोल्डन गेट प्लाजा में, ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-19 पर कॉल कीजिए 9054527333। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

स्वीट फैक्टरी जिथे भाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसे भरोसे विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन से G26 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हम 3 लोकेशन तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 अर्जुन रोड ईटोबीको मेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1135 416-213-1165

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय सहजान, या अली मदद। उम्मीद रखती हूँ कि आपका दिन बहुत ही बढ़िया गुजरा होगा। अभी इस वीकेंड में तो मौसम बहुत अच्छा है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अब क्या है कि आपके लिए ये जो यहाँ नियाग्रा फॉल में बहुत सारे लोग आए हुए हैं और चिपवा में कार्निवाल था, तो वहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल गए हुए हैं, सभी लाइनों में खड़े हैं। और उनके छोटे टाउन में कोई भी छोटी सी चीज आती है तो लोगों को लिए एक्साइटमेंट की वजह बन जाती है। तो नियाग्रा फॉल तो वैसे ही टूरिस्ट स्पॉट है, तो इट्स रियली नाइस फॉर पीपल टू कम। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर कुछ भी लेके आना चाहते हो तो आपके लिए आप नया टीवी लेके आना चाहते हो, फादर्स डे अभी जून फर्स्ट मंथ वीक से शुरू हो जाना है, तो आपके लिए फादर्स डे के लिए आप अगर आप कुछ भी गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, टीवी, फ्रिज, स्टोव, वाशर, आपको बाकी आप फादर के लिए खरीद के दे सकते हैं। आजकल बड़े डिजिटल बड़े बढ़िया परफेक्ट लैंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर बुक करने के लिए आप 905-799-0045। अब आप किचन और वाटर लुक वॉल्व में घर खरीदना चाहते हो तो कॉल 920। और फिर आपने मूवर फिर आपके तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए पहले से ही 416-524-404। तो अब हिस्टोरिकल है, एक बंदा था उसका जो घोड़ा था वो रेस का घोड़ा था, तो उसका जब वो अपना वेट उसका बहुत ज्यादा था उस रेस में जाने के लिए, उसको अपना कुछ ही देर में अपना वेट कम करना पड़ा। तो जब काम कर रहा था वो जिस दिन रेस में जाना था उस दिन उसने काफी सुबह से उठ के काफी वॉक किया, और फिर उसको जब जरूरत पड़ी पानी की उसने पानी नहीं लिया, तो जब वो घोड़े की रेस में था तो उसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो घोड़े पे बैठा ही रहा तो उसका घोड़ा जो था वो जीत गया। तो जैसे कि उसकी डेथ हो गई हालांकि, पर फिर भी वो रेस जीत गया, ये एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। तो अब वो जो भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं पहली पुरानी के कहते हैं कि जो कई मूवीज थे वो कहते हैं कि जो नेपोलियन और नेपोलियन के बारे में जो उन्होंने बाद में बहुत सारी मूवी बनाई तो उसमें जो उन्होंने एक जब वो एक हिस्ट्री का हिस्सा है ना, तो उनके बारे में वो फिक्शन दिखाई जाती है, कुछ असलियत, कुछ इस तरह की चीज, कुछ सम फैक्ट्स एंड सम फिक्शन। मूवीज में तो ऐसा ही होता है ना, कुछ असलियत होती है तो कुछ मन घड़त होती है, तो रोमांस होता है उसमें, राइट। तो उसमें क्या था कि उन्होंने कुछ मूवीज बनाई जिसमें असलियत बिल्कुल ही गलत थी। जैसे कि कहा जाता है कि वो कहते हैं कि जैसे जो बहुत सारे फिल्म क्रिटिक हैं, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हैं इसमें, तो उन्होंने ऐसी बातें कही हैं मूवीज के बारे में कि कई मूवीज में जो असलियत कहते हैं कि ब्रेव हार्ट बहुत बड़ी सक्सेसफुल इंग्लिश मूवी थी, 200 मिलियन डॉलर उसकी सेल हुई थी और 4 एकेडमी अवार्ड उसने जीते थे और बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड उसमें शामिल था। मतलब ये जो इसमें जो दिखाया गया था वो कहते हैं कि हिस्ट्री जो दिखाई गई थी बिल्कुल ही गलत है, कि मेल गिब्सन 1995 में स्कॉटिश इंडिपेंडेंस लीडर विलियम वॉलेस जो कि बहुत नोटोरियस थे,
बहुत सारी जो उन्होंने काम किए, तो इतना था कि जो भी उसमें जानकारी थी ना, बहुत सारी ऐतिहासिक गलतियां थी, जो इतिहास दिखाया गया था उसमें बहुत सारी गलतियां थी, इनएक्यूरेसीज थी। तो इस तरह की जो चीजें हैं लोग याद रखते हैं ना, कि इस मूवी में ऐसा दिखाया गया था, और कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनको हिस्ट्री के बहुत नॉलेज होती है, तो वो एकदम देख लेते हैं, जान लेते हैं। सो प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं, मैंने सोचा कि कुछ जो हिस्टोरिक चीजें हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया जाए। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी, आपको आपने सोने के गहने, सोने की बार, अपने फादर्स डे के लिए कोई गिफ्ट खरीदने हैं, डायमंड्स आपको 70% हो ऑफ, अभी शादियों का मंगनियों का सीजन है, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए। डिजिटल गहने हैं उनके पास, डिजाइन बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। तो आप 905-600-3600 पर कॉल करके अपने फादर्स डे के लिए ऑर्डर बुक कर लो। 905-673-0100 अल मदीना ज्वेलर्स, आपके लिए एयरपोर्ट रोड पे मॉल्टन में उनका शोरूम है। तो आइए अब आपको एक गीत सुनाते हैं। ये भी क्या होता है कि जब दो दिल मिलते हैं तो फिर उनका उनको कुछ चीजें, इस अपना वादा जो होता है उनको याद करवाना होता है, तो वो कुछ इस तरह से बयान करते हैं। मोहम्मद रफी सर का गाना ये गीत है।

संध्या, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइएगा। जो लोग हमें मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, प्रोग्राम को हमेशा सुनते हैं, पसंद करते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उम्मीद रखती हूँ कि इसी तरह आप हमारा प्रोग्राम सुनते रहेंगे। तो आइए अब आपके लिए और गीत सुनाएंगे। पहले आपको बता दें, अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया किस्म के लेके आना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेके आना चाहते हो, बढ़िया प्राइस पे लेके आना चाहते हो, और आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, वन ऑफ ए काइंड, और बारबेक्यू चाहिए, किचन की गैजेट चाहिए, स्मार्ट वन स्मार्ट वाली, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, ब्रैमटन में, दूसरी लोकेशन गोल्फ में। तो फादर्स डे के लिए अभी से अपने ऑर्डर बुक कर लीजिए 9057900045 9057990045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर आप उनके साथ रब्ता कायम कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है तो आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए 416-302-8835। और आपको मूव होना है तो HK मूवर्स, वो आपकी सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं कनाडा भर में, आपको मूव होने में मदद करते हैं। 416-524-8704 पर आप कॉल कर सकते हैं उनको ट्रक बुक करने के लिए। 416-524-6704। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। मास्टर कलेक्शन डिपो आपके लिए अब लंदन में मौजूद है, mastercollisiondepot.com पर जाकर और जानकारी लीजिए। अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको कलेक्शन का काम करवाना है, तो आप मास्टर कलेक्शन डिपो को संपर्क कीजिए, mastercollisiondepot.com पर जाकर।

तो ये मीना कुमारी और राजकुमार के ऊपर फिल्माया गया था। ब्लैक एंड व्हाइट में भी आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड बहुत ही कमाल का है, तो उस जमाने की कोरियोग्राफी को आप देख सकते हो और सराहना कर सकते हो उसकी, कितने बड़े अच्छे लोग, टैलेंट उनका कितना बढ़िया था। तो अब अगर आपने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है तो आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए, पर्सनल या बिजनेस टैक्स, तो 416-312-8135, 416-312-8135। और आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपू लंदन में मौजूद है, लंदन के आसपास अगर आपको कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपू से संपर्क कीजिएगा, masterkollisiondepot.com पे जाके। और अब अगर आप टोरंटो के आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना चाहते हो तो खुशवंत सिंह दास को कॉल कर लो, 416-670-1313, 416-677-1313 पे कॉल कर सकते हैं। आपको लाइव कुकिंग करवानी है, खाना ऑर्डर करना है, मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है, न्यूली रेनोवेटेड न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए मिसिस अगम में ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है। आप लाइव कुकिंग बुक करने के लिए 905-814-1730 पर कॉल करो, 905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेना है, टीवी लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, उनका नंबर 905-799-0045 फादर डे के ऑर्डर बुक करने के लिए, 905-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, masterkollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। और अब आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया सा गीत आपको सुनाते हैं, सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल कवाली है। सो फिल्म थी

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अगर आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है बढ़िया क्वालिटी का तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और जानकारी के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 आपको ट्रक रिपेयर करवाना है। बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर 1715 मिसिस आगा में मौजूद है और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर सकते हो 905-625-0055 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर वालों को। तो आइए अब आपको ये बड़ा ही रोमांटिक मूवी, बड़ी रोमांटिक है, गाना भी बहुत रोमांटिक है, राजेंद्र कुमार माला सिन्हा के ऊपर फिल्माया गया है और महेंद्र कपूर और लता जी ने गाया है। सुनिए प्यार से।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से। आप भी खो गए हैं, अब एक और गीत सुनाएंगे, उसमें भी आप खो जाना जरूर, अपना वीकेंड को सफल बनाना है। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। ऑल द गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो अब नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने स्वर्दा पला, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, प्लीज डू नॉट एंड ड्रिंक एंड ड्राइव एंड बी सेफ। सो हियर इट इज।

हनी जरा एक वेबसाइट नोट करो afcgrocery.com। एशियन फूड सेंटर की ब्रांड न्यू वेबसाइट जितों तुसी इंडो कैनेडियन

0: हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की तो यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA। चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर। विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर। 9057900560 स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट, रामटर्न।
1: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी, 6477022023 6 2 2
2: लाइसेंस नंबर 10394।
3: HK Movers, home, offices, apartments

देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस। आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, अल्फा ऑप्टिकल जिगोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

ओम अथ श्री विचित्र वीर हनुमान माला मंत्र श्री गणेशाय नमः। वीराम मंत्रस्य श्री रामचंद्रो भगवान ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री विचित्र वीर हनुमान देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे मारा मंत्र जपे विनियोगः अथ करण्यासः। ओम राम अमुष्टाभ्याम नमः। ओम रीम गर्जनीभ्याम नमः। ओम रूम मध्यमाभ्याम नमः। ओम रीम अनामिकाभ्याम नमः।

आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जिकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-1990 पर कॉल कीजिए। 905-456-2733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजे दिया सारी आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू है। बेसन पिस्ता रसे जानकारी कॉल करो 416-213-1115 416-213-1115।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, या अली मदद। उम्मीद रखती हूँ कि आपका दिन बहुत ही बढ़िया गुजरा होगा। अभी इस वीकेंड में तो मौसम बहुत अच्छा है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अब क्या है कि आपके लिए ये जो यहाँ नियाग्रा फॉल में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और चिपवा में कार्निवाल था, तो वहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल गए हुए हैं, सभी लाइनों में खड़े हैं। और उनके छोटे टाउन में कोई भी छोटी सी चीज़ आती है तो लोगों को लिए एक्साइटमेंट की वजह बन जाती है। तो नियाग्रा फॉल तो वैसे ही टूरिस्ट स्पॉट है, तो इट्स रियली नाइस फॉर पीपल टू कम। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर कुछ भी लेके आना चाहते हो, तो आपके लिए आप नया टीवी लेके आना चाहते हो, फादर्स डे भी फर्स्ट नेक्स्ट मंथ वीक से शुरू हो जाना है, तो आपके लिए फादर्स डे के लिए आप अगर आप कुछ भी गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, टीवी, फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, आपको बाकी डेफिनेटली आप फादर के लिए खरीद के दे सकते हैं। आजकल बड़े डिजिटल, बड़े बढ़िया मार्केट एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर बुक करने के लिए आप 905-799-0045। अब आप किचन और बाथरूम लुक वॉल में घर खरीदना चाहो तो कॉल 9720। और फिर आपने मूवर फिर आपके हैं तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए पहले से ही 416-524-4164। तो अब हिस्टोरिकल है कि एक बंदा था, उसका जो घोड़ा था वो रेस का घोड़ा था, तो उसका जब वो अपना वेट उसका बहुत ज्यादा था, उस रेस में जाने के लिए उसको अपना कुछ ही देर में अपना वेट कम करना पड़ा। तो जब काम कर रहा था वो, जिस दिन रेस में जाना था उस दिन उसने काफ़ी सुबह से उठ के काफ़ी वॉक किया, और फिर उसको जब ज़रूरत पड़ी पानी की, उसने पानी नहीं लिया, तो जब घोड़े की रेस में था तो उसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो घोड़े पे बैठा ही रहा तो उसका घोड़ा जो था वो जीत गया। तो जैसे कि उसकी डेथ हो गई हालांकि, पर फिर भी वो रेस जीत गया, ये एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। तो अब वो जो भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं पहली पुरानी, ये कहते हैं कि जो कई मूवीज थे वो कहते हैं कि जो नेपोलियन और नेपोलियन के बारे में जो उन्होंने बाद में बहुत सारी मूवी बनाई, तो उसमें उसमें जो उन्होंने एक, जब वो एक हिस्ट्री का हिस्सा है ना, तो उनके बारे में वो फिक्शन दिखाई जाती है, कुछ असलियत, कुछ इस तरह की चीज, कुछ सम फैक्ट्स एंड सम फिक्शन। मूवीज में तो ऐसा ही होता है ना, कुछ असलियत होती है तो कुछ मन घड़त होती है, तो रोमांस होता है उसमें, राइट। तो उसमें क्या था कि उन्होंने कुछ मूवीज बनाई जिसमें असलियत बिल्कुल ही गलत थी, जैसे कि कहा जाता है कि वो कहते हैं कि जैसे जो बहुत सारे फिल्म क्रिटिक हैं, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हैं इसमें, तो उन्होंने ऐसी बातें कही हैं मूवीज के बारे में कि कई मूवीज में जो असलियत, कहते हैं कि ब्रेव हार्ट बहुत बड़ी सक्सेसफुल इंग्लिश मूवी थी, $200 मिलियन उसकी सेल हुई थी, और चार एकेडमी अवार्ड उसने जीते थे, और बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड उसमें शामिल था। मतलब ये जो इसमें जो दिखाया गया था वो कहते हैं कि हिस्ट्री जो दिखाई गई थी बिल्कुल ही गलत है, कि मेल गिब्सन 1995 में स्कॉटिश इंडिपेंडेंस लीडर विलियम वालस, जो कि बहुत नोटोरियस थे,
बहुत सारी जो उन्होंने काम किए, तो इतना था कि जो भी उसमें जानकारी थी ना, बहुत सारी ऐतिहासिक गलतियां थी, जो इतिहास दिखाया गया था उसमें बहुत सारी गलतियां थी, इनएक्यूरेसीज थी। तो इस तरह की जो चीजें हैं लोग याद रखते हैं ना, कि इस मूवी में ऐसा दिखाया गया था, और कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनको हिस्ट्री के बहुत नॉलेज होती है, तो वो एकदम देख लेते हैं, जान लेते हैं। सो प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा कि कुछ जो हिस्टोरिक चीजें हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया जाए। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी, आपको आपने सोने के गहने, सोने की बार, अपने फादर्स डे के लिए कोई गिफ्ट खरीदने हैं, डायमंड्स आपको 70% हो ऑफ, अभी शादियों का मंगनियों का सीजन है, तो आप अलमदीना ज्वेलर्स पे जाइए। डिजिटल गहने हैं उनके पास, डिजाइन बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। तो आप 905-600-3700-100 पर कॉल करके अपने फादर्स डे के लिए ऑर्डर बुक कर लो। 905-673-0100 अलमदीना ज्वेलर्स आपके लिए, एयरपोर्ट रोड पे मॉल्टन में उनका शोरूम है। तो आइए अब आपको एक गीत सुनाते हैं। ये भी क्या होता है कि जब दो दिल मिलते हैं तो फिर उनका उनको कुछ चीजें, इस अपना वादा जो होता है उनको याद करवाना होता है, तो वो कुछ इस तरह से बयान करते हैं। मोहम्मद रफी सर का गाना ये गीत है।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइएगा। जो लोग हमें मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, प्रोग्राम को हमेशा सुनते हैं, पसंद करते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उम्मीद रखती हूँ कि इसी तरह आप हमारा प्रोग्राम सुनते रहेंगे। तो आइए, अब आपके लिए और गीत सुनाएंगे। पहले आपको बता दें, अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया किस्म के लेके आना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेके आना चाहते हो, बढ़िया प्राइस पे लेके आना चाहते हो, और आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, वन ऑफ ए काइंड, और बारबेक्यू चाहिए, किचन की गैजेट चाहिए, स्मार्ट वन स्मार्ट वाली, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन गोल्फ में। तो फादर्स डे के लिए अभी से अपने ऑर्डर बुक कर लीजिए 9057900045 9057990045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर आप उनके साथ रब्ता कायम कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है तो आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए 416-302-8135। और आपको मूव होना है तो HK मूवर्स वो आपकी सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं कनाडा भर में, आपको मूव होने में मदद करते हैं। 416-524-8004 पर आप कॉल कर सकते हैं उनको ट्रक बुक करने के लिए। 416-524-6704। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए अब लंदन में मौजूद है, mastercollisiondepot.com पर जाकर और जानकारी लीजिए। अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो को संपर्क कीजिए, mastercollisiondepot.com पर जाकर।

तो ये मीना कुमारी और राजकुमार के ऊपर फिल्माया गया था। ब्लैक एंड व्हाइट में भी आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड बहुत ही कमाल का है। तो उस जमाने की कोरियोग्राफी को आप देख सकते हो और सराहना कर सकते हो उसकी, कितने बड़े अच्छे लोग, टैलेंट उनका कितना बढ़िया था। तो अब अगर आपने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है तो आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिए, पर्सनल या बिजनेस टैक्स, तो 416-312-8135, 416-312-8135। और आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है। लंदन के आसपास अगर आपको कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो से संपर्क कीजिएगा, masterkollisiondepo.com पे जाके। और अब अगर आप टोरंटो के आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना चाहते हो तो खुशवंत सिंह दास को कॉल कर लो, 416-670-1313, 416-677-1313 पे कॉल कर सकते हैं। आपको लाइव कुकिंग करवानी है, खाना ऑर्डर करना है, मिठाइयाँ ऑर्डर करनी है, न्यूली रेनोवेटेड न्यू इंडिया किचन रेस्टोरेंट आपके लिए मिसिस अग्गा में ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है। आप लाइव कुकिंग बुक करने के लिए 905-814-1730 पर कॉल करो, 905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेना है, टीवी लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, उनका नंबर 905-799-0045 फादर डे के ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, masterkollisiondepo.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। और अब आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया सा गीत आपको सुनाते हैं। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल कवाली है। सो फिल्म थी।

बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अगर आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है बढ़िया क्वालिटी का तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और जानकारी के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045। आपको ट्रक रिपेयर करवाना है बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर 1715 मिसिस आगा में मौजूद है और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर सकते हो 905-625-0055 905-625-0055 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर वालों को। तो आइए अब आपको ये बड़ा ही रोमांटिक मूवी, बड़ी रोमांटिक है, गाना भी बहुत रोमांटिक है, राजेंद्र कुमार माला सिन्हा के ऊपर फिल्माया गया है और महेंद्र कपूर और लता जी ने गाया है। सुनिए प्यार से।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से। आप ठीक हो गए हैं, अब एक और गीत सुनाएंगे, उसमें भी आप खो जाना जरूर, अपना वीकेंड को सफल बनाना है। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। ऑल द गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो अब नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने स्वादा पला। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। प्लीज डू नॉट एंड ड्रिंक एंड ड्राइव एंड बी सेफ। सो हियर इट इज।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection call to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लबदांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: चंगी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत चंगी सलाह नाल हुंदी है, ते ऐदां दी सलाह तुसी हर किसी तो नहीं ले सकते। इस करके रीमैक्स गोल्ड रियलिटी दे हरजिंदर गिल नाल अज ही गल करो। चाहे तुसी फर्स्ट टाइम होम बायर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दी भाल विच हो, प्रॉपर्टी बाय और सेल करना चाहुंदे हो, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स विच इन्वेस्टमेंट या लुकिंग फॉर रिटेल यूनिट्स, तां तुसी बिल्कुल ठीक ना सुनिया। Harjinder Gill, with vast variety of marketing, promotions and showcasing your next home deal, Harjinder Gill is the name to call at 647-400-6862 or visit teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
3: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo, phir to anu koi nahi kar sakega tang, karza maaf karao. 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना व्याज निकिया निकिया किश्तां। कॉल करो कैनेडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
4: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।
5: जी दोस्तों, बिल्कुल, अगर तुसी अपने प्रोग्राम अपने बिजनेस की कोई भी प्रमोशन किसी तरह की भी तुसी करवानी है तो साढ़े नाल संपर्क किया जा सकता है। जे सिर्फ वीकेंड ते करवाना चाहते हो जां फिर जे वीकडे च है तो एक डिफरेंट चैनल तो हरजिंदर गिल हो रही हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे प्रोग्राम लैके हाजिर होंदे ने उत्थे, जां फिर तुसीं वीकेंड ते साढ़े जिहड़ा 2 घंटे का समा हुंदा जी 12 बजे तो लैके 2 बजे तक, इस विच थोड़ी प्रमोशन थानू चाहीदी है ते साढ़े नाल संपर्क तुसीं कर सकदे हो अलग अलग पैकेजेस दे वास्ते 647-400-6862 हरजिंदर गिल होरां दे नाल, जां फिर तुसीं मेरे नाल मनजीत गिल दे नाल 416-669-1379 ते संपर्क करके जानकारी लै सकदे हो। रामस पंजाबी वीकेंड शो दा समां हुण इत्थे समाप्त है जी। आपां एक स्टेशन ID लैंदे हां ते उस तों बाद फिर आपां जुड़दे हां प्रोग्राम नज़रिया दे विच।
6: वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम मनी मेकर। अज असी तुहाडे लई एक खूबसूरत कोटे लैके आए हैं जिहड़ी कि मुस्कोका दे विच लोकेटेड है, 1.5 एकड़ तो लैके 2 एकड़ दे विच बनी हुई है। 2023 दी बिल्ट है, 3 बैडरूम 2.5 वाशरूम ने, मेन फ्लोर ते लिविंग डाइनिंग ते फैमिली एरिया ने, प्लस एयरबिन ते पिछले 2 साल तो बिजनेस कर रही है। 2025 दे विच $90,000 का प्लस ने बिजनेस किया है एयरबिन तो। सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव के उपर बीच है, 15 मिनट की ड्राइव के उत्ते डाउन टाउन हंट्सविल ने, 15 मिनट की ड्राइव से गोल्फ कोर्स है। जे तुसी इस कोटे नूं देखना चाहते हो, इस कोटे नूं बाय करना चाहते हो, राइट वे कॉल 416-265-2222। J Gundam call 416-265-2222.
7: Euphoria is back and it's only on Crave. The groundbreaking HBO original critics call one of the most explosive, heartbreaking and entertaining shows on television returns for a new season starring Emmy winner Zendaya.
8: If you make a deal with the devil, there's no turning back.
7: A new chapter begins. The real world awaits and their story changes forever.
9: Wherever these unlucky folk go.
10: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974008812 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: दोस्तों रब ना करे थानू अपनी कार वैन या ट्रक नू किते भी अमेरिका जां कैनेडा दे विच टो करवाउण दी जरूरत पै जांदी है, तां फिर नाम याद रखना है तुसीं, किंग टोइंग 416-677-2222। किंग टोइंग वाले 416-677-2222। एमरजेंसी रोड असिस्टेंस, लोंग डिस्टेंस कार और ट्रक टोइंग, फ्लैट बैड या हैवी ड्यूटी टोइंग सर्विसिज दे लई जाने पछाने नाम किंग टोइंग 416-677-2222 416-677-2222 किंग टोइंग।